टाइम संसार मीडिया प्राली कावसोते 3 नवलपुर संपर्क ईमेल एंड संसार मीडिया @gmail.com

एम संसार मीडिया प्राली कावासोती 3 नवलपुर संपर्क ईमेल एम संसार मीडिया @gmail.com

एम संसार मीडिया प्राली कावासोती 3 नवलपुर संपर्क ईमेल एम संसार मीडिया @gmail.com

एम संसार मीडिया प्रारी कावसोती 3 नवलपुर संपर्क ईमेल msansarmedia@gmail.com मोबाइल 9831 31215

एम संसार मीडिया प्राली कावासोती 3 नवलपुर सम्पर्क इमेल @mobile 9831 31215

एम संसार मीडिया प्राली कावासोते 3 नवलपुर सम्पर्क इमेल @mobile 9831 31215

संसार मीडिया प्री कावसोती तीन नवलपुर संपर्क ईमेल एन संसार मीडिया एट द रेट जीमेल डट कम मोबाइल 9831 31215।

एम संसार मीडिया प्राली कावासोती 3 नवलपुर सम्पर्क इमेल @msansarmedia@gmail.com मोबाइल 9831 31215

एम संसार मीडिया प्राली कावसोती 3 नवलपुर सम्पर्क इमेल @nsansarmedia@gmail.com मोबाइल 9831312015

एम संसार मीडिया प्राली कावासोती 3 नवलपुर सम्पर्क इमेल @ संसार मीडिया @gmail.com मोबाइल 9831 31215।

एम संसार मीडिया प्राली कावासोती 3 नवलपुर सम्पर्क इमेल @mobile 9831 31 215

प्राइम संसार मीडिया प्राली कावासोती 3 नवलपुर सम्पर्क इमेल ansansarmedia@gmail.com मोबाइल 9813 31 215

संसार मीडिया प्राणी कावासोती 3 नवलपुर सम्पर्क इमेल @sansarmedia@gmail.com मोबाइल 98 31 31 215

प्राइम संसार मीडिया प्रणाली कावासोती 3 नवलपुर सम्पर्क इमेल @sansarmedia@gmail.com मोबाइल 9831 31215

एम संसार मीडिया प्राली कावासोती 3 नवलपुर सम्पर्क इमेल @msansarmedia@gmail.com मोबाइल 9831 31215

यहाँ जब मैं आ रहा था तो ये चर्चा थी कि क्या प्रोग्राम कैंसिल कर दें क्योंकि बारिश हो रही है। तो हमने सोचा 11 साल हो गए हैं नेपाल में आए हुए, तो किसी ना किसी तरीके से प्रोग्राम करेंगे। तो सबसे बड़ी बात है कि हम यहाँ क्यों आए, यहाँ आने का उद्देश्य क्या है। अब बारिश होने लगी तो लोगों को अच्छा नहीं लगता है, परंतु जरा ख्याल करो, सोचो कि जीवन में भी यही हाल होता है। हर एक दिन सूरज नहीं चमकता, समस्याएं आती हैं और मनुष्य उन समस्याओं को जब काबू में नहीं कर पाता है तो घबराता है। सबसे बड़ी बात है, मैं नुक्स को बढ़ावा देने के लिए नहीं आया हूं। जो भी तुम करते हो

को बढ़ावा देने के लिए नहीं, पर उसको बढ़ावा देने के लिए आया हूं जो तुम्हारे अंदर अच्छाई है। और अच्छाई क्या है? तुम्हारे अंदर दया है, तुम्हारे अंदर करुणा है, तुम्हारे अंदर प्यास है, तुम्हारे अंदर वो सारी चीजें हैं जिससे कि मनुष्य का कल्याण हो सकता है। पर इस संसार में फंस के होता क्या है? क्या होता है? जैसे जो चौकीदार होता है, अब बड़े बड़े घरों में ये लोगों को अच्छे तरीके से मालूम है कि किसी को दरवाजे के पास रखते हैं, तो कोई भी आता है उसको वो रोकता है, कहता है किससे मिलना है, कौन हो आप, पूछता है ना, कौन हो आप? क्या तुम्हारे इस शरीर रूपी मकान के बाहर भी कोई खड़ा है जो ये पूछता है किससे मिलना है या नहीं? जो आया वह अंदर घुस गया। और ऐसे ही चोर तुम्हारे मकान में घुसता है और चोरी करता है, और किस चीज को चुराता है? तुम्हारे आनंद को चुराता है, तुम्हारे ज्ञान को चुराता है, तुम्हारे समय को बर्बाद करता है। इस संसार के अंदर सबसे बड़ी बात यही है कि ये जो मौका मिला है जीवन का, इसको हम बर्बाद न होने दें। बर्बाद सारी चीजों में लग करके हम भूल जाते हैं कि ये जो मौका है, ये जो श्वास अंदर आ रहा है जा रहा है, ये कितना मूल्यवान, इसका मूल्य भूल जाते हैं। ये कार कितने की आएगी, ये मकान कितने का आएगा, ये सब्जी कितने की आएगी, ये तरकारी कितने की आएगी, ये घी कितने का आएगा, ये सारी चीजों में फंस जाते हैं। और ये जो श्वास है जो अंदर आ रहा है जा रहा है, जो सबसे मूल्यवान चीज है, इसका कोई मूल जिसका लगा नहीं सकते हैं, इसके बारे में भूल जाते हैं। इसीलिए मैं नेपाल में आया हूं, इसीलिए मैं यहां आया हूं, तुमको याद दिलाने के लिए कि ये जो मौका है, क्या मानुष जन्म अनमोल रहे, माटी में ना रोल रहे, अब तो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। बहुत बड़ी बात है ये। संत महात्माओं ने बार बार याद दिलाने की कोशिश की है कि मानुष जन्म अनमोल रहे, माटी में ना रोल रहे। इसमें ये नहीं कहा है कि जो हीरा है वो अनमोल है, नहीं, मानुष जन्म अनमोल रहे, मानुष जन्म अनमोल रहे, माटी में ना रोल रहे, अब तो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रहे। तू सत्संग में जाया कर, गीत प्रभु के गाया कर, श्याम सुबेरे बैठ के बंदे उनका ध्यान लगाया कर। नहीं लगता कुछ मोल रहे, माटी में ना रोल रहे, अब तो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। तो ये याद रखना कि ये बार बार नहीं होता है। अब जो हुआ है, देखो यहां प्रोग्राम रखा गया, किसी को नहीं मालूम था बारिश होगी या नहीं होगी,
अब ये पवित्र स्थान है, क्यों पवित्र है, यहाँ ये प्रोग्राम हो रहा है, क्यों पवित्र है? क्योंकि ये भगवान बुद्ध की जन्मभूमि। तो उन्होंने भी यही हवा अंदर ली और बाहर ली, और वही हवा तुम्हारे अंदर अभी आई और गई और फिर आएगी और फिर जाएगी। लोग तो जाएंगे, देखेंगे कहाँ वो स्थान है, क्या वो स्थान है, परंतु कोई भी इस हवा की तरफ ध्यान नहीं दे। और ये वही हवा है जो सब संतों ने, जितने भी अवतार हुए हैं, सब ने यही हवा अपने अंदर ली और अपने से बाहर निकाली। और वही हवा तुम्हारे अंदर आ रही है और तुम्हारे से जा रही है। सोचो, ये प्रसाद है, ये आशीर्वाद है। मेरा कहना है आनंद लो, इस जीवन का पूरा पूरा आनंद लो। वो तेरे ही अंदर है, वो तेरे ही अंदर है, और उसको जानो। और अगर जानना चाहते हो तो हमारे पास इस सेल फोन का पिन कोड है। और अगर नहीं जानना चाहते हो, खुश रहो। और हम बता देते हैं, खुश रहने की तुम कोशिश करोगे पर खुश रह नहीं पाओगे। बिना कोड के ये फोन जो है ना, किस काम का है? इस फोन से तो तुम एक कील भी नहीं ठोक सकते, किसी काम नहीं आएगा। परंतु अगर तुम पिन कोड जानते हो तो इस फोन को खोल सकते हो और फिर किससे बात कर सकते हो? वही विधि हरि हर जाको ध्यान करते हैं मुनिजन सहस 88 सोई हंस तेरे घटमाई, उस हंस से उसका ध्यान कर सकते हो, अपने जीवन को सफल कर सकते हो। खुश रहो, आनंद आनंद आनंद आनंद होना चाहिए तुम्हारे जीवन के अंदर। सभी लोगों को मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद।

तो आज बहुत ही सुंदर मौका है कुछ सुनने का, कुछ समझने का, क्योंकि ये जो समय हमको मिला है ये बहुत ही दुर्लभ है। हम संत महात्माओं की पूजा जरूर करते हैं, पर वो जो कहते हैं उसको मानते नहीं हैं। सबसे बड़ा चक्कर यही है। पूजा करने के लिए तो हम तैयार हैं, ये सारी चीज़ें करने के लिए हम तैयार हैं, तीर्थ व्रत करने के लिए हम सब तैयार हैं, जबकि महापुरुषों ने कहा है इससे मेरा ज्ञान नहीं होता है, इससे तू मेरे को नहीं मिल पाएगा। और जो सच्चाई है क्या उसको हम स्वीकार करने के लिए तैयार हैं या नहीं? सच्चाई क्या है? तीन चीजें हैं, सिर्फ तीन चीजें हैं। और क्या है वो? तुम्हारा जन्म हुआ, ये सच्चाई है, ये तुम्हारी सच्चाई है, ये तुम्हारी सच्चाई है, तुम्हारा जन्म हुआ। अगर तुम्हारा जन्म नहीं हुआ होता तो तुम यहां नहीं बैठे होते। तुम्हारा जन्म हुआ। दूसरी सच्चाई, तुम जीवित हो, तुम्हारे अंदर श्वास आ रहा है और जा रहा है, ये तुम्हारी दूसरी सच्चाई। और एक और सच्चाई है, एक दिन तुमको यहां से जाना है। इन तीन सच्चाइयों के बारे में तुम कुछ नहीं कर सकते, ये सच्चाइयां हैं। तुमसे पहले जितने भी लोग इस संसार में आए उनके लिए भी ये तीन सच्चाइयां थी। अब आती है बात कि जब तक ये श्वास आ रहा है और जा रहा है हमको क्या करना चाहिए, कुछ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए? बस यहां सारी बात खराब होती है। आए एक ही देश से, उतरे एक ही घाट, हवा लगी संसार की, हो गए बारह बाट। जैसे ही इस संसार की हवा लगती है हम भूल जाते हैं इन तीन सच्चाइयों को। स्वर्ग है कहां? जहां वो क्या विधि हरि हर जाको ध्यान करत है। ब्रह्मा विष्णु और महेश भी जिसका ध्यान करते हैं, विधि हरि हर जाको ध्यान करत हैं, मुनि जन सहस अठासी, सोई हंस तेरे घट माही, अलख पुरुष अविनाशी। वहां स्वर्ग है, असली स्वर्ग वहां है। और जो इस जीवन के अंदर वो बता दे, दिखा दे, ताकि उसकी पहचान हो जाए। अभी किसी ने हमको चिट्ठी लिखी, उसमें लिखा कि कई बार जब हम अभ्यास के लिए बैठते हैं, सुनो मेरी बात, जब हम कई बार अभ्यास के लिए बैठते हैं तो हमको एहसास होता है कि हमारा मन भटक रहा है। तो ये तुमने सुना होगा नाम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, तो ये व्यक्ति आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बात कर रहा था, GPT से बात कर रहा था। तो जानती हो क्या कहा GPT ने?
जीपीटी ने कहा तुम तो बहुत पहुंचे हुए हो, तुम तो बहुत पहुंचे हुए हो कि तुमको पता लग गया है कि तुम्हारा मन विचलित है। जब मैंने ये बात सुनी मैंने सोचा हाँ भाई बात तो सही है, क्योंकि सारे दिन जो हमारा मन विचलित होता है हमको एहसास नहीं होता है कि विचलित हो रहा है, कभी इधर भाग रहा है कभी उधर भाग रहा है कभी उधर भाग, सारे दिन भागता रहता है और हम उसके पीछे पीछे भागते रहते हैं। परंतु जब अभ्यास के लिए बैठते हैं और विचलित होता है तो पता लगता है हाँ वो उधर जा रहा है उधर जा रहा है उधर जा रहा है उधर जा रहा है उधर जा रहा है, और फिर नहीं मेरे को यहीं रह के अभ्यास करना है। कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है। मां या बाप स्कूल के आगे खड़ा हुआ है, सारे बच्चे जो निकल रहे हैं उनको देख रहा है, परंतु देखते हुए भी वो उनको नहीं देख रहा है क्योंकि वो एक को देखना चाहता है जो उसका बेटा है या उसकी बेटी है। बस ठीक उसी प्रकार से मन इधर भागता है मन उधर भागता है, और जिसको पहचान है कि कहां भागना चाहिए कहां होना चाहिए, कितनी बड़ी बात है कि उसके पीछे भागने की तुमको जरूरत नहीं है। अपने जीवन को सफल बनाओ, ज्ञान ज्ञान वो साधन है जिससे कि तुम उस तक पहुंच सकते हो जो विधि हरिहर जाको ध्यान करत है मुनिजन सहस 88 सोई हंस तेरे घटमाई अलग पुरुष अविनाश। अभ्यास करने की जरूरत है, लोग अभ्यास नहीं करना चाहते लोग अभ्यास नहीं करना चाहते, खाने खाने को क्या करना पड़ता है, खाना पड़ता है, पानी को क्या करना पड़ता है, पीना पड़ता है, दृश्य कोई सुंदर से सुंदर दृश्य हो उसको क्या करना पड़ता है, उसको देखना पड़ता है। ज्ञान का अभ्यास करना पड़ता है, बिना ज्ञान मिले अभ्यास कर नहीं सकते, और बिना ज्ञान का अभ्यास किए बिना तुमको विवेक नहीं मिले। विवेक क्या होता है, रात को जब अंधेरा हो जाता है आंखें तो तुम्हारी ठीक है पर दिखाई कुछ नहीं देता है, नहीं हमारे साथ एक दिक्कत तो रहती है, हम जगह जगह जगह जगह भ्रमण करते रहते हैं तो एक कमरे में तो हम रहते नहीं है, जब नया नया कमरा मिलता है तो कहीं पलंग इधर लगा हुआ है कहीं पलंग उधर लगा हुआ है, कभी गुसलखाना उधर है कभी गुसलखाना उधर है कभी गुसलखाना उधर है। अब जैसे रात को उठो तो सबसे पहले प्रश्न आता है हम हैं कहाँ, बहुत बार होता है बहुत बार होता है हम हैं कहाँ, फिर टटोलना पड़ता है। तो हमने एक कानून बनाया, कानून यह है कि पलंग के पास एक टॉर्च रखी हुई है, टॉर्च रखी हुई है, क्यों रखी हुई है
जब टटोलने की बारी आती है तो हमको सब कुछ टटोलने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक चीज को टटोलने की जरूरत है और वह है वो टॉर्च। टॉर्च जलाई और सब दिखाई देता है कहां जाना है। जो चीज असंभव थी वो ज्ञान के द्वारा संभव हो जाती है। तुमको क्या पकड़ने की जरूरत है? सब कुछ टटोलने की जरूरत नहीं है, सब चीजों का अभ्यास करने की जरूरत नहीं है, तुमको सिर्फ ज्ञान का अभ्यास करने की जरूरत है अगर तुम अपने हृदय में उस शांति का अनुभव करना चाहते हो।

एम संसार मीडिया प्राली कावसोती 3 नवलपुर संपर्क ईमेल एम संसार मीडिया @gmail.com।

एम संसार मीडिया प्राली कावासोती 3 नवलपुर सम्पर्क इमेल msansarmedia@gmail.com

एम संसार मीडिया प्राली कावसोती 3 नवलपुर संपर्क ईमेल एम संसार मीडिया @gmail.com

एम संसार मीडिया प्राली कावसोती 3 नवलपुर संपर्क ईमेल एम संसार मीडिया @gmail.com।